प्रतीक्षा, यूएस ग्रीन कार्ड होल्डर। अब हामी चाँडै बिहे गर्दैछौ। दिदी जा।

0: আমা মগয়
1: ঢিলা ভাইসি লাই গৌ মাতা রামসঙ্গ বসনু ওহো পনি আইয়ার अब यसलाई बुझाउनु पर्ने भयो।
2: यो चिटिङ नभनिकन जानलाई चाहिँ
1: माफ गर्दे यार, हिजो राति 81 कल आयो, जानै पर्ने भयो।
2: ल ल आइज बस, म छोडिदिन्छु।

0: प्रोप्राइटर वीरेन्द्र रत्न साख्य 011-620-51 98-41-51-67-84 चौतारोको पुरानो बजार कृष्ण मन्दिर सँगै
1: In the mix.
2: Hi, this is Britney Spears.
3: Hey, what up, this is Jay-Z.
4: This is Jennifer Lopez.
1: The mix.
5: 89.6 FM.
6: La, la.

0: एलम्बु एफएम 89.6 मेगाहर्ट्ज।
1: अब रंग थेसु मुला रेडियो कार्यक्रम स्पार्क माइ फेथ नला विश्वासी चमक बसुगो। रंगला आत्मिक लुइदा निरन्तरण रि थन्सुगो। जयमसी तथा नमस्कार लासु फ्याफुल्ला रेडियो कार्यक्रम स्पार्क माइ फेथला जीवनला क्षण गदे श्रृंखलाला अङ्क 10 श्री रङनी स्वागत मुला न वियोग तामाङ तिनिङ रङ देन रङला सेम हाला ताम लाबरी सेमुला रङ से रङला सेमरी हाजीब विचार गदे चारिबा पिन्सुबा विवा तामसे रङला लुई हरङला सी बिताबला सुला विवा विवा ताम निर्धारण लाला थेन्दे रङला तिङ्री कते आनन्द ताला विवा ताम एन निर्धारण लाला हितुवदे चार अधेला 23 बेलन ताम भन्दा लाना रङला तिङ्द सुरक्षित थन्सुगो तिग्द विषम थे बेनन लुइला मूल हिन्ना याङ याङला दिमागरी तिग ताम्रि ध्यान केन्द्रित लमुला थेसे याङला हरङबा नङमुला थेन्दे छ्याम्री याङसी लाबा गे गदेन निर्धारण लमुला। जब याङ याङला दिमागदा चु संसारला नकारात्मक आजेवा ताम गदेसे खाबारी पिन्ला याङ संकालुदेन निराश ताला। जब याङ याङला दिमागदा परमेश्वरला प्रतिज्ञा से ख्वाबा छनोट लाला याङला तिङ आशा सान्त्वना देन आनन्द से प्लिङला। दोस्रो क्रान्ति 10 अध्यायला 4-5 नन्से लडाइरी थोबा हतियार गदे चा सन्दो गदे मि गदे से थोबा हतियार राङबा आहिन् तर नन्से थोबा हतियार चा सैतानला ला शक्ति देन नन्ना कुङरी मुबा लुसिला ताम गदेदा नास रखाम्बा परमेश्वरला शक्ति हिन्न घमण्डलासी परमेश्वरला ज्ञान बुद्धिला विरोध लाबा जम्मन ताम गदेदा नन्से नास लाबा मुला ओछे जम्मन नङबा ताम गदेदा ख्रिस से कुलबा ताम न्यान्दै बिसी नन्से तहारी थान्बा मुला याङसे याङला स्मृतिग सोचिबेला सोचिबसेला विवा बारेरी परमेश्वर से गन्दा चुरी आत्मिक निरन्तरण रि चिबरे बिसी थान्स्युबा मुला रङसे सायद थेमी गदेदा डान्स्युमु सुला जो हाइमा दमन नकारात्मक ताम गदे स्वीकार लमुला थेनी गदे हाइमा दमन याङला लुइरी चिन्ता देन लोङमा बाबा बारेरी ताम लजिबा मुला थेनी गदेदा ताम तिग्दा छुत्ते नकारात्मक अझेबा मुला त्यो प्रश्नला जवाब चुसे नन्दा वचन रि पिन्छु बा मुला मत्ती 12:34 पुखरीला कोला गदे एनी गदेला सेमरिन पाप मुला विषम खरङ लसी जब ताम पङ्खम्ला तिग्द विषम सेमरी जुन ताम मुला थेनन ताम एनी गदेसे पाङबा हिन्ना जब मि गदेसे रङला सेमद चु संसारला अझेब विचार गदेसे भरिपूर्ण तबरे पिनमुला तब थेनी गदेला सुङ्ग्याम थेनन ताम थोनमुला मती 12:35 जब गे सेम मुब मिला सेम नङ्ग्याम जब ताम थोनमुला ओछे नाइबा सेम मुब मिला सेम नङ्ग्याम नाइबन ताम थोनमुला। रङला आत्मिक लुइदा नियन्त्रण रि ताबरी दम सुगो रङसे रङला ध्यान केन्द्रित लबरी अनुमति पिन्सुबा विचार गदेदा जानी जानी नियन्त्रण लसी चु लसुगो रङसे थेराङ लाभ तरिका विवा परमेश्वरला वचन ज्ञान हावा प्रतिज्ञा गदेसे रङला दिमागदा सन्तुष्ट लबहिन्बा। दोस्रो क्रान्ति 9:8 परमेश्वर से एनी गदेदा जम्मान से तोबा भन्दा लानन पिन्ना जमहेन से एनी गदे देन छम सदन लानन से गदे तला ओसे एनी गदे से ज्यावा गेला लागरी स्यान्दो गदेदा पिनबारी खम्ला सैतान से रङला दिमागरी थेरङबा विचार गरे भराब लावरी माइला जुनसे रङदा माई मुलाकी रङरी तिगै चाङना मुला थेन्दे रङदा तिगै तोला थेसे रङदा बिलागी रङरी आवश्यकता बत्ताम छोना अरे यदि रङसे रङला दिमागदा थे सुझाव कदेरी ध्यान केन्द्रित लारीबा पिन्सुजी विषम रङ दुखी दे निराश महसुस लवरी थाल्दी सुला जब रङ चुरङ नङमुलाकी रङ देन तिगै ताम छो न अरे वा रङला रुइरी तिगै माबन मुला थेदुइरी रङसे थे विचारदा परमेश्वर वचन ज्ञान प्रतिज्ञा से बदला ददोला गेन स्वर्री दाबी लसुगो परमेश्वर से नदा मलाम पिन्सुला ताकि नदा हाइमा दमन आवश्यक एन बेनान ताम गदे याङ्गै स्वीकार लसुगो परमेश्वर से नदा आवश्यक एन तोबा से गदे स्रोत गदे पिन्मुला ताकि ना परमेश्वर से नदा लाबरी सेम लाबा बेनान ताम लाबरी हाम्बा ताबरी हाम्ला जम्मन दिन बाइबल पढावला छनो लसुगो थेन दे जब रङसे नही कोरन्थी कदेरी उल्लेख लबा रङला बारेरी हाजिबै प्रतिज्ञा याङसुला थेसे कण्ठ लसुगो दिग दिन चुला बारेरी सुचब लसुगो थेन दि पक्कयन फिरक्या दोब दोबला दुयन रङला लुई नङरी आनन्द से पिङला आमेन रङिला जीवन रे परमेश्वर जी प्रशस्त आशिष दिन्छु। प्रभावशाली बाइबल शिक्षक सोवन भिक्टर यम लिखित सन्देश याङला भाषारी न्यन्सुजी कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ कार्यक्रमलाई बारेले रङनीला केही प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव मुसाम घन्दा सम्पर्क लसिगो घन्दा फोन नम्बर मुला 98685353939 हस्त त्यो समय रिङ बिदा ताजी रङनी छङ मदानु जयमसी नमस्कार।